हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लोसियों का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन जरूर आप सुनते ही रहना।

भजन यात्रा की खास प्रोग्राम में जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर, हरिओम शरण जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

आसरो मीठे हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में एक सुंदर सा श्री कृष्ण जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

खास भजन यात्रा प्रोग्राम है। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं। चले प्रोग्राम में सुंदर सा राम जी का भजन बस पेश किया जा रहा है। एक सुंदर

सुंदर सा श्री राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों, चले प्रोग्राम में विपिन सचदेव की आवाज में आपकी बार एक सुंदर और अति सुंदर श्री हनुमान जी का भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है नरेंद्र चंद।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शनिवार का दिन 13 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पुरानी नगमे पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चले प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत जो पेश किया जा रहा है 1962 का फिल्म का फिल्म का नाम प्रोफेसर मोहम्मद रफी एंड लता।

द माइटी मुकेश की आवाज में गाना पेश की गए पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सरो मीठे गाना सुनकर और काफी पसंद किया। आज शनिवार की खास सुबह की प्रोग्राम में जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। अब की बार हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में, जबकि बहुत सी सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम को सुनते हैं। तो गीता दत्त एंड मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा फिल्म प्यासा 1975 का फिल्म 1957 का फिल्म गीता दत्त एंड मोहम्मद रफी।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म प्यासा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना लाइव के जरिए ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में शहरी तरह से बस पेश किया जा रहा है। हॉलैंडीज का सबसे खूबसूरत शहर से उत्तरा शहर से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है लाइव फनाउट एट हार्ट फन नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी हॉलैंडीज के बीच में मिड नीदरलैंड में और दूर दूर शहरों तक और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम आप डीएबी प्लस द्वारा भी सुन सकते हैं। उत्तरेख लेइटसे रैन गिरधारी स्ट्रैट से खासतौर पर राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। उत्तरेख लेइटसे रैन गिरधारी स्ट्रैट से राजन गिरधारी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक खास गाना आज शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम प्यार ही प्यार। देखा है तेरी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार।

मेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। उत्रेख लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी ये काफी प्यार भरी गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रोटरडम शहर की रहने वाली राधा, राधा ने तार किया स्टूडियो की ओर और एक बड़ी ही खूबसूरत गाना फिल्म प्रोफेसर से मांग किया है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। चले मिलकर रोटरडम की रहने वाली राधा की मांगी हुई गाना।

सर ये नौ का वक्त हल्फ तीन स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है हर सुबह की डर वक्त हल्फ

0: खूबसूरत गाना लता जी की आवाज में बस मांग किया है, जरूर सुनते ही रहना
1: रेडियो SBS 24 hours with the best music.
0: सुतमेर शहर से नेहा ने तार किया है और नेहा ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है।

वालुकी सेवा में बस पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है 21, 22 और 23 अगस्त मिलन सौदा पार्क डेन हाग शहर में होगा। इस साल 21, 22 और 23 अगस्त मिलन होने वाले हैं सौदा पार्क डेन हाग शहर के अंदर में। द एर्स्ट एंड द ग्रोट्स मिलन जो होने वाले हैं और वो होगा इस साल 21, 22 और 23 अगस्त सौदा पार्क डेन हाग शहर के अंदर में। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट होता है, उसी वेबसाइट पर हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। उसी वेबसाइट के जरिए अपना टिकट भी आप खरीद सकते हैं और ग्राम फरहूर के लिए उसी वेबसाइट के जरिए हर एक इंफॉर्मेशन इन्फो आपको दिया जा रहा है। मिलन समर फेस्टिवल दिस ईयर 21, 22 और 23 अगस्त सौदा पार्क डेन हाग शहर में द एर्स्ट एंड द ग्रोट्स्ट मिलन। चले प्रोग्राम में गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं और अब की बार मॉरिशियस से दुशन जिंगरे एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है और गाना मांग किया है सभी सुनने वालों के लिए और खास तौर पर इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाला अरुणेश के लिए और पूरा परिवार के लिए। शुभ दिन शुभ वीकेंड के साथ ये गाना बस पेश किया जा रहा है और वो भी मॉरिशियस से दुशन जिंगरे की तरफ से।

का नाम लता जी की आवाज में गाना पेश की गई, ये जिंदगी हमारी क्या खूब जिंदगी है। सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा, नेहा ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुन

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। फिल्म का नाम आस का पंछी और खासतौर पर मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरी ये खास गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया है आप सभी सुन वालों के लिए और खासतौर पर इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाले परिवार अरुणेश के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया है। दुष्यंत आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और गाना मांग करने के लिए सभी सुनने वालों के लिए और खासतौर पर इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाले परिवार अरुणेश के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। गाना जो अब की बार पेश होगा जर्मनी डॉयचलैंड की रहने वाली जेन जेन के तरफ से डेनहाग शहर की रहने वाली ग्लोरिया के लिए एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम अदालत मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जर्मनी डॉयचलैंड की रहने वाली जेन के तरफ से स्पेशल गाना डेनहाग शहर की रहने वाली ग्लोरिया के लिए पेश किया जा रहा है।

Uit de film Adalet Mohammed Rafi aur Lata Jiki Awaaz mein ye gana pesh ki gaye tumse dur rehke. Aur khaas taur par ye gana aaj ki program mein mang karne wali thi. जर्मनी डॉयचलैंड की रहने वाली जेन, जेन ने मांग किया है डेनहाग शहर की रहने वाली ग्लोरिया के लिए. तो फिल्म फिल्म का नाम अदालत, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना. जेन आपको भी शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते

0: इस साल मिलन की ओर जाने वाले हैं, जो साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में होने वाले हैं। हाँ, तो आप जाएंगे तो जरूर मुलाकात होगा मिलन साइड पार्क डेनहाग में 21, 22 en 23 augustus. Met boel naar na diary, op na agenda mee. Zerur, note kijje. Sabse bara. Aus sabse pehla Milan Hollandese ki andar mee. Jo saalu se hota aya hai. Milan Summer Festival.nl website par sabhi informatie diya ja raha hai. Ook voor gram verhuur. Aur aapke ticket ke liye bhi. उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। स्पेशल गाना, स्पेशल समवन के लिए बस मांग किया है। प्यार और मोहब्बत के साथ चले मिलकर सुनते हैं उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना की मांगी हुई गाना।
1: रेडियो SBS wens je een mooie zonnige dag.

द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गए अगर तुम ना होते। दीवन का रहने वाला मनोज का मांगी हुई गाना आज की शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS इंटरनल उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए और नीदरलैंड में और साउथ हॉलैंड में प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों तक भी ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए भी आप सुन सकते हैं। सुनने वालों आने वाले दिनों कहीं पर पार्टी में आप जाने वाले हैं या फैमिली में कोई भी पार्टी होने वाले है, विवाह है, शादी है और आप अच्छी ड्रेस में अच्छी कपड़े में आप पार्टी में जाना चाहेंगे तो जरूर अपना कपड़े जो है आप जाकर खरीदिए मुस्कुराता फैशन दुकान के पास जो देनहाग शहर के अंदर में है। कुछ लोग खबरें सुनकर और गए मुस्कुराता के पास में और कहा कि रेडियो SBS ने भेजा है तो उन लोगों को ढेर सा कोर्टिंग मिला है। तो आप भी जाइए और अपने कपड़े अपने गहने जूते जो है या जो भी सामान है आप यहां पर जाकर सस्ती दामों में खरीदिए। हॉलैंडीज के अंदर में सबसे बड़ा दुकान होते हैं जहां पर आप इंडिया भारत देश का कपड़े गहने जूते हर एक सामान जाकर खरीद सकते हैं। तो अगर आप गए मुस्कुराता के पास तो जरूर कहना कि रेडियो SBS आपको भेजा है तो आपको ढेर सा कोर्टिंग दिया जाएगी। जिस तरह से कुछ लोग कुछ सुनने वालों यहां पर गए और कहा कि रेडियो SBS ने भेजा है तो ढेर सा कोर्टिंग उन लोगों को दिया गया है। आप भी जाइए और फायदा ही फायदा उठाइए। सबसे नए मॉडल कपड़े हर सप्ताह यहां पर अंदर आते हैं। मुस्कुराता फैशन दुकान जो है देनहाग कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर ग्रैटिस पार्किंग यहां पर है। उत्तराखंड शहर से श्रीमती मखदा नंदा ने तार किया है। प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं और एक गाना लता जी की आवाज में सुनना चाहते हैं तो हम आपको ले चलते हैं फिल्म अनारी की ओर। लता जी की आवाज में उत्तराखंड शहर की रहने वाली

पुरानी फिल्म अनारी का गीत बीच की गई लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। और खास तौर पर उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा, श्रीमती माखदा नुंदा ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया। लता जी की आवाज में गाना सुनना चाहती थी और इसी तरह से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अवनेर शहर के अंदर में कैलाश भी हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है और कहा कि घर पर हमेशा रेडियो SBS ऑन रहता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के प्रोग्राम में कैलाश एक बड़ी प्यार भरी गाना मांग किया है मुकेश और लता जी की आवाज में, फिल्म फरिश्ता या कातिल। अलमेर शहर का रहने वाला कैलाश का मांगी हुई गाना मुकेश एंड लता, कुछ ऐसे बंधन होते हैं।

कुछ ऐसे बंधन होते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म फरिश्ता या कातिल 1977 का फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में कैलाश ने मांग किया। शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुन वालों, बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, यहाँ स्टूडियो के बाहर धूप ही धूप निकला हुआ है। खूबसूरत सुहाना मौसम है। अब ऐसे आने वाले दिनों टेम्परेचर ऊपर की ओर जाने वाले हैं। अभी मैंने देखा कहीं आने वाले सप्ताह टेम्परेचर कहीं कहीं 20 तक खराब होने वाले हैं। कहते हैं एयर सीन डाउन खलोफन। चलिए गाना लता जी की आवाज में फिल्म चलते चलते उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और डेलफ्ट शहर की रहने वाली आशा आशा भी तार किया है कुछ बातें हुए और एक खास गाना बस सुनना चाहते हैं आज की प्रोग्राम में। फिल्म का नाम चलते चलते, सॉन्ग बाय लता मंगेशकर।

फिल्म का नाम चलते चलते। लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। डेलफ्ट की रहने वाली, डेलफ्ट शहर की रहने वाली आयशा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। बस शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से सुनते ही रहना। सुनने वालों फरमाइश हुआ है इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामों काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में आपकी सभी कामों काज किया जा रहा है। फरमाइशी का दाम सालों से इस महंगाई की जमाना में भी 5 यूरो पर फरमाइश और सभी गाने आपकी फरमाइश में अच्छी क्वालिटी साउंड में बस पेश किया जाएगी। कोई भी गाना यूट्यूब द्वारा नहीं पेश होगा, अच्छी क्वालिटी साउंड में सभी गाने सभी नख़मे बस पेश किया जाएगी एट दैट 4-5 यूरो पर फरमाइश। सालों से ये दाम आप सभी के लिए रखा गया है, इसमें कभी प्राइस में नीचे या ऊपर नहीं किया गया है। सालों से एक प्राइस रखा गया है आपकी फरमाइश के लिए, विवाह की फरमाइश, शादी, सालगिरह, जन्मदिन, मुंडन संस्कार की फरमाइश के लिए।

में सुनने वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। स्टूडियो की ओर भी तैयार किया है उत्तराखंड शहर से श्रीमान किशोर, और श्रीमान किशोर गर्मा गर्म कॉफी के साथ इस वक्त हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया है द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना।

का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आप सभी सुनने वालों से निवेदन है, गुजारिश है, गाना मांग करने के लिए स्टूडियो की ओर मत तार कीजिए या तो मत ऐप द्वारा तार कीजिए, इसलिए कि हमारा लिस्ट जो है बिल्कुल भर गया है। तकरीबन 11 बजे तक ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो पेश किया जाएगी, और आज की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को मौका दिया गया है गाना मांग करने के लिए। देखा जाए लेवार्डन शहर से मफराव छेदी, मफराव

तैयार किया है और प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। और एक गाना मांग किया है किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में, मैं नदिया की धारा, नाग पंचमी फिल्म का नाम है, उसी फिल्म का गाना लेवार्धन शहर के रहने वाली मफराव छेदी ने मांग किया है।

किशोर और किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश की गई नाग पंचमी फिल्म का नाम मैं नदिया की धारा। लेवार्दन शहर की रहने वाली मफराओ छेदी ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो रेडियो SBS की जरिए पेश की गई है। आपके तार के लिए भी लाख लाख धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में भी काफी सुनने वालों विस्तार किया है, अपना अपना गाना को मांग किया है, हजारों हजारों सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए इंटरनेट रेडियो की जरिए या तो डीएबी प्लस रेडियो की जरिए हमारा ये प्रोग्राम को सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में पहली बार यानी कि पहला बार यहाँ स्टूडियो की ओर तार किया है जॉन, रोटरडम शहर का रहने वाला है और जॉन ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स दिया है और खबर किया है कि हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम रोटरडम शहर के अंदर में सुनते हैं, लेकिन कहा मुझसे कि आज मैंने कोशिश किया आप लोगों को तार करने के लिए और एक गाना मांग करने के लिए। रोटरडम शहर का रहने वाला जॉन ने तार किया है और एक बड़ी ही खूबसूरत गाना किशोर कुमार की आवाज में मांग किया है, फिल्म ब्लैकमेल, एक गाना जो हर एक पसंद करते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ब्लैकमेल फिल्म का नाम, द लेट हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र का फिल्म ब्लैकमेल।

किशोर कुमार के आवाज में ये गाना बस पीछ की गए पल पल दिल के पास तुम रहती हो। रोटरडम शहर से रोटरडम के रहने वाला जॉन जॉन का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आसरो उम्मीद है जॉन अपना गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम बस सुनते ही रहना और इसी तरह से हमेशा प्रोग्राम में हिस्सा भी लेते ही रहना। आज शनिवार की खास सुबह की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को मौका दिया गया है गाना मांग करने के लिए और इसी तरह से बहुत सी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार किया है। रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार किया है, ऐप भी किया है अपना अपना गाना। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा प्रोग्राम में साथ दिया है। काफी कॉम्प्लीमेंट्स भी अंदर आया है सुनने वालों ऐप द्वारा तार द्वारा भी ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स दिया है कि अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। फिल्म सूरज उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। मोहम्मद रफी की आवाज में बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब जो आया है। आज की प्रोग्राम में एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जाएगी और मांग करने वाली है देनहाग शहर की रहने वाली सिंटिया सुक्कू। ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम सूरज बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब जो आया है।

0: महबूब जो आया है, सूरज फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश की गए मोहम्मद रफी की आवाज में, और दनहाक शहर की रहने वाली है सिंटिया सुखू की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आसरा उम्मीद है गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इसी तरह से एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में साथ दिया, गाना मांग किया। आने वाले दिनों जब भी हम आपको फिर से मौका देंगे तो जरूर इसी तरह से प्रोग्राम में हिस्सा लेते ही रहना। Teemsdreef 237, Sher Utrecht. Zie je programma Pieskia Jarahahe live vanuit het hart van Nederland, vanuit Midden-Nederland. Radio SBS, Sangeet Bhari Station, ka programma. सुनो वालों, रिक्लाम की ओर हम आपको ले चलेंगे, लेकिन आपको हम याद दिलाना चाहेंगे ...21, 22 en 23 augustus. Milan Summer Festival, मिलन होगा साइड पार्क Den Haag शहर के अंदर में। अभी से डेटम जो है नोट कीजिए, 21, 22 एंड 23 अगस्त मिलन होगा, मिलन समर फेस्टिवल Den Haag शहर के अंदर में, द ईस्ट एंड द ग्रोथ मिलन हॉलैंड के अंदर में। हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है मिलन समर फेस्टिवल .nl, ग्राम फरहूर के बारे में इसी वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, और टिकट के लिए भी मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट होता है।
1: Klaar met nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek.

तो प्यार का बंधन है। अभी आपने सुना गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई फिल्म करण अर्जुन, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई नई आवाज में नई संगीत में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शनिचर शनिवार का ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम को जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। साधना सरगम एंड उदित नारायण प्रोग्राम में

जो फिल्म आ गले लग जा, फिल्म का नाम आ गले लग जा। साधना सरगम एंड उदित नारायण के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से उदित नारायण और साधना सरगम होगा द मूवी बाजी, उसी फिल्म का ये गाना उदित नारायण एंड साधना सरगम।

बांसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनबलो 8 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 11 बजे में। मौसम की ओर देखा जाए तो धूप ही धूप का मौसम है, बाहर की ओर देखा जाए तो धूप ही धूप निकला हुआ है। आप सभी सुन वालों को बस एक खूबसूरत सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। सुपरमार्केटों को दबा ये खबर कर रहे हैं कि इस वीकेंड जबरदस्त अनबीडिंग ही अनबीडिंग दुकान के अंदर में रखा गया है, तो जरूर आप तस्री फरमाइए। प्रिंस बर्नार्ड लेन नंबर 4 एंड 5 तक उत्तरेख जयलन में जो है

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

मैथिली सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 10 मिनट व्यतीत हो चुका है, साढ़े 11 बजकर शनिवार का खास प्रोग्राम पेश किया जा रहा है 13 तारीख जून। एक मुलाकात जरूरी है गाना जो पेश होगा

ये है सनम गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फकीर से इन्फॉर्मेशन की ओर। उसके बाद लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। तो चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं। फिल्म पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गाना नई आवाज में, नई संगीत में।

की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त लेते हुए हम आपको ले चलते हैं इस शनिवार की दोपहर का प्रोग्राम में, लोकल टाइम प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है। श्रुति की आवाज में आप सुनते ही रहना किशोर मेटली, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

टूर मेटली प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में हजरों मीठे की आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना ये खूबसूरत किशोर मेटली। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मिस्टर इबो आपकी बार प्रोग्राम में। मिस्टर इबो वाहिद हुसैन

एक मेडली सॉन्ग प्रोग्राम में पेश की गए मिस्टर इबो वाहिद हुसैन की आवाज में अभी आपने सुना। आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में काफी दिनों के बाद एक गाना पेश किया जा रहा है शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में। पुरानी फिल्म का गीत आप सुनते ही रहना।

शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना दलित शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में। चलिए अब की बार जेरी और रकीस की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप

आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और चले अब की बार संजय की ओर। रेडियो SBS शेड्यूल ट्रैक से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लाइव फन आउट एट हार्ट फॉर नीदरलैंड शेड्यूल ट्रैक द मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड, उसी शहर से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। मिस्टर संजय

आ रेडियो SBS के जरिए मिस्टर संजय की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.com.au, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं न सिर्फ हॉलैंडीज के अंदर में लेकिन हॉलैंडीज के बाहर भी, सभी को वेलकम। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना लाइव के जरिए। ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। खासतौर पर स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11, इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में रोबर्टो की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में मिस्टर रोबर्टो

रहे हैं रेडियो SBS की जरिए, और इस वक्त उसी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं, मजा ही मजा लेते हैं। चलिए प्रोग्राम में अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जयंत की आवाज में एक मैथिली सॉन्ग

प्रोग्राम में मेडली सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोती माला भोला सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है, तेरा साया जहां पर भी हो सजना।

तेरा साया जहां पर भी हो सजना। मोटी माला भोला सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए अब की बार उमर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्म का गीत आप सुनेंगे उमर की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-611।

चालू की सेवा में पेश किया जा रहा है। तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम पेश होगा और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक पेश किया जाएगी आप सभी सिद्ध वालों की सेवा में।

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनने वालों अभी अभी हमने देखा कि हजारों हजारों सुनने वालों इस वक्त दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का

पास में गानाबस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको मालूम होना चाहिए वही हिट और हॉट प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हर रविवार को पेश किया जा रहा है 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। ग्लैन रामबाली की जरिए बैठक गाना मास्टर ग्लैन रामबाली की जरिए हर इतवार वही हिट और हॉट प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और इस वक्त आप सुन रहे हैं वही हिट प्रोग्राम लोकल टाइम का प्रोग्राम रेडियो SBS की जरिए।

0: तरह से प्रशांत प्रशांत की आवाज में ये गाना पेश की गई टुंग टुंग बराफू हमारी बहुत सी सुनने वालों स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कितने खूबसूरत गाने प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में अब की बार
1: अभी दे दो
0: ये गाना
1: है तो अभी

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीत है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl से वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी। सागर मलिक, रोबर्टो और साथियों की आवाज।

गए सागर मलिक रोबर्टो और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए। बहुत सी सुनने वालों बस

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शनिवार का दिन है, वीकेंड है और रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

चले प्रोग्राम में प्रशांत खन्ना और पापू मैन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रशांत खन्ना और पापा मैन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार लकी सरन की आवाज में

रेडियो SBS के जरिए लकी सरन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों लोकल टाइम प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और इसी गाना के साथ

कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा मुझे तार कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0325656560 पर। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस वीकेंड। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से फिर मिलूंगा।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। विल टू रिएक्शन कैन इट ऑलवेज सर्व मा नार द वेबसाइट www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032 62 66 11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहम।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादियां मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्धफिल्म हम आपके दिल में रहते हैं dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Padmanabhan. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal uit de film Panipat komt Sapna hai sach hai.

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chorie Chorie en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम आउट द फिल्म जवाने जाने मन एंड आउट द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

गली गली में फिरता है, इस सॉन्ग दो अलका याचनिक एंड पप्पी लहरी एंड क्वाम आउट द फिल्म त्रिदेव एंड आउट द फिल्म हलियाली और रास्ता कॉम्त, बोल मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता।

मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस सॉन्ग दूर अखिल सचदेव एंक्वाम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया कंठ को सॉन्ग दूर सोनू निगम एस सुनिधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली इस किस्म उधर बेनी दियाल अनमोल मलिक एन अनु मलिक दे सकेर अत क्वाम आउट द फिल्म हंगामा 2 हाँ उधर फर्दर में हमेशा तेरे साथ रहूँगा आउट द फिल्म कृष्णा कॉटेज किस्म उधर कमाल खान.

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हाउ गर्लफ्रेंड एंड इज गजोंग डोर अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपटी. हाउ द फेदर मैट जुबेर नौटियाल मैट आउट द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आरडी बर्मन लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार वासुदेव लीजे फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्रामा गीतों के लहर। एंड अर्ध फिल्म बागी 3 कम्स खजानदार शान एंड रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस और द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड और द फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेश से। और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ।

शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है प्यार द रीमेक्स।

बुढ़ापे में मजा क्या आएगा, दिल लेने देने के लिए जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है